समग्र भई किंकनी सबद जनत काल खेल पाए जीव काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके इस बम ज्ञान ध्यान धरत ही चाहे सच

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब

0: तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम धरना
1: संगीत भुजंग प्रयाग छंद जागर दंग नागर दंग बागर दंग बाजे गागर दंग गाजे महा गाजे गाजे कागर दंग तीरंग तो कंकड़ाकंग कागर दंग काती कटारी कड़ाकंग दिरना दिरना दिरना

मैं अजिहे सुख तो की लेना है जेड़ा सुख नालो वधेरे दुख लेके आई जा रहा है। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगिया भावे। ओ सुख मेनू अच्छा नहीं लगता जेड़ा वधेरे दुख लेके आ रहा है। ते गुरु साहब भी अपनी बाणी दी इस पंक्ति दे विच ए कहंदे ने, ऐ संतो ऐ ऐसे पुरुषों जिन्हां दे पास के इनसाइट है, ऐसे महापुरुषों ऐसे सतपुरुषों मेरे ते बख्शिश करो, कोई मेनू अजिहा सुख दसो, सो सुख मोको संत बतावो, कोई मेनू ऐसी कंफर्ट दसो जिस दे नाल तृष्णा बूझे मन तृप्तावो। आओ सारे रल के प्यार दे नाल इस पंक्ति नू गाइए, अगा फिर अज दी इस विचार चो असी गुरबाणी दे व्यू पॉइंट दे विचों ए लभीए कि सुख किस तरह मिलता है। आओ सारे रल के गाइए।

तुहाडे सामने एक फरीद साहब जी दा मैं श्लोक रखदा हां, जिस दे विच फरीद साहब साडी जिंदगी दी जो हालत है उस दा जिक्र करदे हन। फरीद साहब डिस्क्राइब करदे हन कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग। कहंदे हन

किते क्या ताम है मन संतोख ना पाया, किते क्या मन ना सुहेला परपंच हीला। तो अखीर संता ने की क्या, कर कृपा संतन सच कहया। सर्व सुख तमाम सुख मिल जाते हैं इंसानू, ए आनंद लहया। किस तरह साध संग हर कीर्तन गाई, साधुआं दी महापुरुषां दी संगत दे विच कहिंदे ने अगर उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं अडोर करना आ जाए, उस दे नाल कम्यूनिकेट करना आ जाए, उस दे नाल इंटरैक्ट करना आ जाए, उस नूं सलाउण दी जाच आ जाए, सलाह ते ओ सकेगा जिसनू नजर आएगा, सलाह ओ सकेगा जिसनू ओ सुनाई देगा, सलाह ओ सकेगा जिसनू ओ फील होएगा। असी ना उसनू महसूस करदे हां, ना असी उसनू देखदे हां, ना असी उसनू सुनदे हां। गुरमत दे विच एक बहुत खूबसूरत मेडिटेशन उन्होंने दसी है, तीन ही चीजा दसिया हैं, उस मेडिटेशन मैं थोड़े नाल सांझा करना।

तो कह देता है जगत निर्धन है गरीब है वाहेगुरु दे नाम तो बिना। ओ वाहेगुरु वाले जीवन तो बिना इंसान गरीब ही रहिंदा है चाहे वह कुछ भी बन जाए। जिस दे जीवन दे विच वाहेगुरु नहीं है वह गरीब है। गुरु अमरदास जी महाराज ने भी इस विचार की प्रोढ़ता की है। वह भी कहते हैं

फिर कहते हैं इत तन पे भुख लथी जिन्हां दे पल्ले ए तन आ जांदा है अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफत सलाह दा अकाल पुरख वाहिगुरु जिन्हां दे हिरदे दे विच आ जांदा है जिन्हां दी सुरत दे विच आ जांदा है जिन्हां दे वचनां दे विच आ जांदा है जिन्हां दे जीवन दे विच आ जांदा है कहिंदे हन उन्हां दे मुतलक इत तन पे भुख लथी सुख वसिया मन आए उन्हां नूं बाहर सुख इकट्ठा नहीं करना पैंदा सुख उन्हां दे अंदर आ जांदा है साडा कीर्तन इत्थों शुरू होया सी एक सवाल तों कि सौ सुख मोको संत बतावे ओ संतो ओ मैनूं सुख दसो किस तरह हासिल हुंदा है तो उन्हां ने कहा सुख तुहाडे आत्मा दे अंदर तुहाडे अपने अंदर आ जांदा है सुख बाहर नहीं है कंफर्ट हैज नथिंग टू डू विद एक्सटर्नल पोजेशन मटीरियल It is purely a state of mind.

थोड़ा फिर इसनु मैं दोहरा दें, बहुत तत दी गल कही है। अगर असी संसार तक आ विचार पहुंचा सकिए कि गुरु अमरदास जी महाराज ने की तत कढ़िया है, सुख किस तरह मिलता है, तो साड़ी सबना दी जिंदगी दी जो अंदरली अवस्था है वो बदल सकती है। कहंदे हन श्लोक महला तीजा, इस जग में संती तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया आए, सतगुर सच दृढ़ाया, सतगुरु सानू झूठ फॉल्स फेक पैरिशेबल नालों कढ के तत दे नाल रियालिटी दे नाल जोड़ दिंदे हैं, रियालिटी दिखाल दिंदे हैं। और रियालिटी जिथे कोई गरीबी नहीं है, जिथे कोई दुख नहीं है, जिथे कोई मौत नहीं है, उस दे मतलक जिन्होंने उस रियालिटी नू पालिया हासिल किया, उन्होंने कहा ना ओ मरता ना हम डरिया, ना ओ मरता ना हम डरिया, ना ओ बिनसे ना हम कड़िया, ना उस भूख ना हमको भूखे, ना उस दुख ना हमको दुख। ऐ अवस्था बनती है जिन्होंने सच नू देखिया है, तत नू देखिया है। उन्होंने मतलब ये क्या है, गुरुमुख अंतर सहज है, उना दे अंदर टिकाओ ही बनिया रहिंदा है, बाहरली कोई भी टर्मोइल उना दे अंदरले टिकाओ नू जो है वो भंग नहीं कर सकते। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भुख है, हर अमृत नाम सुखवास, तिथे दुख सुख व्यापत नहीं, जिथे आत्म राम प्रकाश। गुरु साहब ओ मन दी अवस्था सानू दिंदे हन, कहंदे हन इस जग में संती तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया आए, सतगुरु सच दृढ़ाया, इस तन की कीमत कहीं न जाए, इत तन पै भुख लथी सुख वस्या मन आए, लेकिन जिना को तुर लिखिया तिनी तिनी पाया आए, बाकी साडे वर्गियां दी जो दशा है ओ ते ए क्या है, मनमुख जगत निर्धन है। मनमुखा दा जो मन दे पिछे ही चलदे हन, जेड़े नित नित खुशियां मन करे, जेड़े दिन रात मन दियां खुशियां दे पिछे पै रहंदे हन,

अखीरला श्लोक कह के समाप्त है। कबीर साहब ये कहते हैं जिस तरह असि दुख पैण उत्ते वाहिगुरु की आराधना करते हाँ, सुख दे विच भी उसकी आराधना करो ताकि तुहाड़ा सुख बनिया रहे।

शब्द काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हों बिरहो जाले। इस दी बंदिश पैरवी ते शिवरंजनी दे मिलाप, दो रागां दे मिलाप दे विच है।

रहने तकिए है तो पत्थर पर चमकना भरा है, लेने मियां मेरे बच्चे पेट के लिए। सरदार ने किया भाई इन्हे बदले की दे देंगी, तो तेरी सात संगत रैन ने टोकरी चो एक मूली चुकी। मरदान का बड़ा हैरान है, मालिक ने तो किया सी मरदानिया बड़ी वड्डी दात है, पहला का लैण वाला कोई गाहक नहीं मिले, जे मिले तो मुल की पिया एक मुल। प्रधाने ने क्या माई एक मूली छोड़ी है तू दो मूलियां तो दे। अरे हंस के मैं तो एक मूली भी तेरे उते एहसान करके पी दी, परदेसी जापदा दूरों आया जापदा, दूर का पानी जापदा क्योंकि तेरे पैरों की धूल पर बिटे भी चुकी। एक मूली भी ऐसा मरदाना अगे अगे हलवाई की दुकान, हलवाई ने तरह तरह दिया मठियाइया ताजिया तैयार करके सोने चांदी के वर्क लगा के थाला रखी, ताजिया मठियाइया वाल करके भुखे मरदाने के मूह पानी पाया, मदद हलवाई नू दे देती। डाक्टर की भीड़ पहाड़ तो बड़ी पर मरदाना लंघदा लंघदा हलवाई दे कोल से, क्यों जी आ लोगे? हलवाई ने तकिया ते सिर फेरे, मैं शुरू की करन पर क्या लाया, अद्धी शताकी का वट्टा गुम हो गया वो थां ते रख लिया कर, क्योंकि उस वे पत्थर के ही वट्टे चल रहे जिस तरह आजकल लोहे के वट्टे हैं, कई तरह के साधन बन गए हैं हूं का, और उस वेले पत्थर के हूं भी कदे सुल्तानपुर तुम जा जिथे मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी ने मोदी खाना चलाए दुकान चलाई तकड़ी तो वो वट्टे हूं भी पे। हलवाई भी तके है तो पत्थर पर चमकदा बड़ा, मेरा भी इतनी टाकी का वट्टा गुम हो गया वो थां ते रख लवाना। हलवाई कह लगा लै नहीं, मरदाने ने किया ये बदले फिर मिठाई कि नहीं दोगे? हलवाई ने क्या इन पाओ मिठाई दी। मरदाने ने किया जी पा थोड़ी है कोई ज्यादा दो, क्योंकि मैं कल्ला नहीं मेरे नाल मेरा मालिक भी, मैं उन्हें भुखा तो नहीं कहना पर तीन दिन हो गए हैं रोटी उन्हें भी नहीं खाई, पता नहीं केड़े आहार नालो जी एक शेर मठियाई दर्ज। हलवाई ने क्या इस तू ज्यादा नहीं तेरी सुंदर। मरदाना निराश होके वापस अगों कोई भला पुरुष मिले, उदास मरदाने वाल तक के पूछा जी हो जी तुम उदास क्यों? प्रधाने ने सारी विख्या दी, मालिक ने टुट के दात बख्शी है कोई लैण वाला नहीं मिलता, किसी ने दिखानी सी मरदाने ने क्या दिखाई केनू अरैल होर किसू हलवाई तेरे क्या क्षमा कर जी थोड़े को वस्तु है ये अरैणा से हलवाइया के लैण वाली। मरदाने ने कहा फिर कौन लाएगा? इस गुरमुख ने कहा फलां बाजार में चले जाओ एक बड़ी सुंदर दुकान, उस दुकान के अंदर शीशे के चौके अंदर मैं कई ला
लाल लाल गीटियों पर यह तकी उठे ले जाओ एदा बुल उठे कर बरदाना थोड़ा जहा खुश कर वो दुकान किसकी है जौरी उस जौरी का नाम की है जी उसका नाम है सालस कैसे मरदाना पुछता पुछा सालसराय जौरी की दुकान पे आके चले दुकान बड़ी सुंदर बड़ा सुंदर कारपेट बिछया हुआ है अंदरों सेंट दिया खुशबू आ रही है मरदाने ने जिस वे दुकान के अंदर पैर पाया सालसराय ने तकिया कोई आया बड़े अदब नाल उठ के हथ जोड़ के आओ जी आया नू इथे बैठ मरदाने ने सोनी चेयर पे कुर्सी पे मरदाना बड़ा खुश सोचन लगा माना लेना देना तो एक पासे ने पर बोलिया बड़ा मिठा है मिठा बोलना भी एक जादू मिठा बोलना भी इंसानियत इंसान होके कौड़ा बोलता है ओदा बोलना परवान ऐसा बचन कदे भी ना करिए जिदे नाल किसे दे मन नूं दुख भाई गुरदास जी ने भी लिखा सिख दा जीवन पिछले राती जागण नाम नाम इशनान दिलाए फिर मिठा बोलन निव चलन हथों दे के भला प्रधाना बड़ा खुश मिठा बोल प्रधाने ने मुठ खोली शाह जी आ लोगे सास रह ने क्या जरा ठहर नौकर नु बुलाया बच्चा धरका जी मालिक अंदरों चौकी ले आंदी एदे चिट्टा रुमाल पापा जी सालस राय ने मरदाने वाल तकिया ते किया जी ए कोई कौड़ियां नहीं जो मिट्टी कट्टे विच रोलोगे ए लाल इनू इत्थे रखो मरदाने ने रख सालस राय ने परख वाली अख लाल लाल नू तकिया फिर लाल वाल वेंदिया वेंदिया सालस राय का सिर चुक गया फिर चुके नौकर वाल तकिया बेटा धरका जी मालिक लिया 100 रुपये की थैली लिया सालसराय ने लाल दे के रख के मत्था टेकिया लाल ते 100 रुपया सालसराय ने मरदाने की झोली पा मरदाना बहुत हैरान हो गया सोचेगा कदे 100 रुपये की थैली वाल तकद कदे सालसराय के मूह वाल वेखद है रह नहीं सकिया मरदाना कह लगा शाह जी गुस्ताखी माफ करे अजे भला कोई नशा पानी तो नहीं खाते पीते आपको श्री वाले सालसराय ने क्या कोई नशा मरदाना कह लगा फिर आ के किया जी नाले लाल भी नहीं लिया नाले 101 रुपया हो सालसराय के नेत्र पर उस्तादा के वारे वारे मेरे उस्ताद ने मेरे की सालसराय योजना सच्चा ते सच्चा लाल दुनिया से पर जे तेरे पाग जागन योजे लाल ने तेन दर्शन हो जान ओदा मुल पा के अपमान न करी 101 रुपया दर्शन भेटा ये तो इनकी भेट मरदाना बड़ा खुश है बाबा तू भी तन है तेरी दात भी तन तेरी भेट 101 रुपये पर कौन मेरा करता है सालसराय जी परख लिया लाल लाल पर जिससे परख वाली अखा दे कोल आ गया तो मुल नहीं पै रहे पेट अदब हो रहे सत्कार हो रहे भाई साहब भाई नंद लाल जी ने लिखा
ਪਰ

रहत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ दू जे लगे, हर नाम छोड़ दू जे लगे, इनके गुण हो क्या कहूं।